सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कब हो झूरी है, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों लई खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: वक्त दिए थे वेखी मैं पाबंदी है,
1: वाह,
0: पर मैं वेखी थे ना फिर का बंदी है।
1: वाह जी वाह।

0: 7997877 थैंक यू जी।
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
2: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA, कॉल करो
3: एडवरटाइजमेंट करनी है तुसी अपने बिजनेस नु प्रमोट करना ते तुसी साडी टीम नाल संपर्क कर सकते हो 6478352549 4 दे उपर तुसी संपर्क कर सकते हो।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। बड़ी जल्दी है, मैनूं लगदा तुसीं बुझ गए मेरी बुझारत दा। चलो लै के कॉल, फिर आपां हेडलाइंस वाल भी जाना। 6075 जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल।
1: बताऊं नहीं
0: बताऊं है तुसीं एकदम ही बुझ गए। हां जी क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। सो नाइस ऑफ यू। नाल ही गया, कहंदे बताऊं है। प्रमोद जी गुड मॉर्निंग जी।
1: हरशान
0: तां सवेरे सवेरे आ गया सीगा जी, मूल मंत्र कर गया हरशान तां। अच्छा अच्छा, ओदा लै के आवां, ओदा लै के आवां। मैं दोबारा मैं भरूंगा जी, भरूंगा मैं, भरूंगा मैं भी भूल
1: ठीक
0: है जी। मैं लैके आऊंगा जरूर जी, हुण छुट्टियां हो गईयां, जरूर मैं लैके आऊंगा जी। थैंक यू सो नाइस जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हां जी हां जी हां जी, सही गल है जी। मैं कहा चलो ओदी पा लैने, औखी पावांगा मैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताऊं बैंगन, देखो कितने बताऊं कहते हैं, कितने बैंगन कहते हैं। सो प्यारी जी एक बुझारत दे नाल शुरुआत की है। चलो फिर आओ, फिर हुण थोड़ियां जिहियां जिहड़ियां हैडलाइनस है उन्हां वल आपां रुख कर लईए, ते एक जिहड़ी है स्टोरी है मेरी कोशिश है कवर करन दी, ते उहदे ते फिर तुहाडे जिहड़े विचार भी मैं लैणे चाहांगा। तो देखदे आं उहदे ते किन्ने कु तुहाडे विचार आउंदे आ, ते आपां फिर हुण चलीए करिए खबरां दा रुख करदे आं। दोस्तों आओ फिर हुण चलदे आं खबरां वल।

सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकाब हो चूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु और मेरे नाल पंजाब की धरती तो निरपक्ख निर आवाज़ रमेश हुशियारपुर जी जुड़ चुके हैं। तो रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा का आनंद माणते हैं। स्टूडियो दी घड़ियों के मुताबिक 7:04 हो चुके हैं। थोड़ा साढ़ा साथ होने तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

सतगुर होए दयाल सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू चूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़दी कला वाली सवेर के खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vichu puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar.
2: ना करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
4: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
5: Noble Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 289-801-0566 ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: आज खुश तो बात हो गई था।
9: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ।

0: one-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: नोबेल फ्रेज फूड शहर विच इको दौरा पै गया तो आप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेज फूड फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेज फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 2898010566 नोबेल फ्रेज फूड
3: जी दोस्तों एक बार फिर वतन दूर च आप सब दा निघा स्वागत है और 1:40 आलमोस्ट 40 मिनट हो चुके ने ते 2 बजे तक तुहाडा साडा साथ रहना काफी साडे स्टूडियो च मेहमान काफी कम दियां तुहाडे नाल गल्लां करांगे और नाल दी नाल साडी लाइन इस टाइम पंजाब इंश्योरेंस दे नाल जुड़ चुकी है राणा जी साडे नाल ने जी आयां नूं सर
4: थैंक यू सो मच सुखी भाई तुहानू ते अपने सारे लिसनर्स नूं सब तों पहलां प्यार भरी सत श्री अकाल सो आपां हमेशा इंश्योरेंस एंड आरडीएसपी दी गल्लबात करदे आं सो आरडीएसपी तो जिदा आप स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान जिदे अंडर की है $90,000 तक दी जिहड़ी ग्रांट है फेडरल गवर्नमेंट वालों दिती जा रही है जिहड़े लोग डिसेबल हैगे ने फिजिकली भी हो सकते हैं मेंटली भी हो सकते हैं पर जिहड़ी उम्र है वो 49 साल तो घट होनी चाहिए अगर 49 दी एज तो एज तुहाडी घट है तो जरूर तुसीं इह बेनीफिट लै सकदे इस तों अलावा गवर्नमेंट ने जिन्हां दे कोल डिसेबिलिटी टैक्स क्रैडिट सर्टिफिकेट हैगा कल उन्होंने पैसे वधाए हैगे ने जिहड़े बच्चे 18 साल तो घट हैगे ने उन्होंने पेरेंट्स नूं $3,490 हर साल जिहड़ा उन्होंने जिहड़ा हैगा आ सकदा हैगा एंड जिन्हां दी उम्र 18 तो वध है उन्होंने साल का $2,400 जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट वालों हैल्प की जा रही है यह अडिशनल बेनीफिट्स ने जिहड़े फैडरल गवर्नमेंट दे रही है जे कोई तुहानू इत्थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई ODSP या कोई होर बेनीफिट दे रहे हैं वह भी पैसे बंद नहीं होणगे अडिशनल हैल्प है जो तुहानू मिल सकती है अगर तुहाडे कोल डिसेबिलिटी टैक्स क्रैडिट सर्टिफिकेट हैगा सो डॉक्टर्स तो कड़े फॉर्म साइन करवाने ने CRA तो सानू कड़ा पेपर चाहिए तुसीं कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000 416-910-9000 वैबसाइट है punjabinsurance.ca एंड सुखी पर ये बहुत वड्डी हैल्प है काफी परिवार है जिहड़े जिन्हां दे घर दे विच स्पेशल नीड वाले बच्चे हैगे ने आपां नूं पता है हैल्थ कार्ड दे विच काफी जिहड़ियां इदां दीआं थैरेपीज ने जिहड़ियां कवर नहीं हुंदीआं सो पेरेंट्स नूं उन्हां बच्चों का ज्यादा फिक्र है जिहड़े आपां ये कह लईए भी स्पेशल नीड वाले हैगे ने ऑटिज़म इत्थे बहुत ज्यादा हैगा सो फैडरल गवर्नमेंट हैल्प करना चाहुंदी उन्हां सारे परिवारां दी उन्हां सारे बच्चों की जिन्हां नूं ये इशू हैगे तां कि उन्हां दे फ्यूचर नूं स्ट्रोंग बनाया जा सके क्योंकि उन्हां दा मनना यही है भी अज पेरेंट्स अलाइव हैगे ने उस बच्चे की वधिया टेक केयर कर सकते ने पर जे पेरेंट्स नूं पहलां कुछ हो गया तो उस बच्चे की टेक केयर किन्ने करनी हैगी अगर पैसे होणगे तो कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर जिहड़ा हैगा निकल सकदा है सो तुसीं कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस ते अगर तुहानूं कोई भी जानकारी चाहीदी होवे $90,000 की ग्रांट ली 416-910-9000 416-910-9000 वैबसाइट है punjabinsurance.ca ते लास्ट विच भाजी मैं यही कहांगा जो आप इंश्योरेंस की गल करते हैं हरेक परसन जो परसन हैल्दी हैगा जिन्हां दी एज यंग हैगी है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी चंगा प्लान ऑफर करती है सो प्रीमियम भी घट देना पैंदा कवरेज भी सानू ज्यादा वधिया अमाउंट की मिल जाती है सो अगर तुसीं भी कनेडा चाहे अजे तक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट नहीं की अपने ते अपने परिवार लई चंगा इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट करने लई तुसीं पंजाब इंश्योरेंस दे किसी भी एडवाइजर नूं कॉल कर सकते हो मेरा डायरेक्ट नंबर है 416-910-9000
3: अगर अपने बिजनेस नूं प्रमोट करना कोई होर कोई गीत संगीत सुनना जां आसपास दी खबर तुसीं सांझी करनी है ते दस सकदे हो ते शाह साहब इक तुसीं कहिंदे आ दसना चाहीदा वी किसे नूं कोई तकलीफ होवे ना
5: जी जी
3: क्योंकि अपने कोल डॉक्टर भी पहुंच गए स्पेशलिस्ट है ना
5: जी
3: मेरा भी कल का गल ठीक करने लगता है
5: जी बिल्कुल
3: पर इधर आलम लोहार साहब कहते कि दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी नु सुनाई
5: हाँ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਰਮ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਾੜੇ ਖੁੜੇ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਲੇ ਸੇਮ ਕਾਇੰਡ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਨਰਸਾਂ ਨੁਰਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਤਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
3: ਕੀ ਬਾਤ, ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ,
5: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ,
3: ਸੁਣਾਈਏ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ
5: ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ।

0: हम एक जरिया है, गवर्नमेंट आज भी बारिश कर रही है ग्रांट्स की, मिस ना करें आप इस चीज को, एंड देन कॉल करें एंड फायदा उठाएं।
1: तो आज पहला भी कोर्स होया तां भी कोई गल नहीं, तां तुसी दोबारे कोर्स दे विच एनरोल हो सकते हो, ते जे तुसी 65-70 साल दे हो, पेंशन भी लै रहे हो, तां भी एनरोल हो सकते हो। कॉलेज की फीस भी सरकार पे कर रही है?
0: बिल्कुल जी, कॉलेज की फीस भी गवर्नमेंट पे करती है।
1: हुण इह बस गिणती दे दिन रह गए भाजी।
0: और बिल्कुल ऐसी ही बात है, लाइक जब गवर्नमेंट इतनी चीजों में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो LGBT को फंडिंग 100 मिलियन की, L2 नाम की एक नई रेलगाड़ी बना रहे हैं ये मॉन्ट्रियल से लेके और टोरंटो तक, $90 बिलियन उस पे लगा रहे हैं, जब गवर्नमेंट सिर्फ 4 बिलियन एजुकेशन पे लगाती है, तभी हमें लगता है कुछ हैरानी हो रही है।
1: इतने 4 बिलियन एजुकेशन दे?
0: बिल्कुल जी।
1: उत्थे कितना मां?
0: उधर लाइक 90 बिलियन ट्रेन बना रहे हैं मॉन्ट्रियल से लेके टोरंटो तक के लिए,
1: मतलब 4 बिलियन तो फिर वो हिसाब ना
2: कुछ भी नहीं है।
0: और आम लोग
1: नाले इन्हां दे बंदे पढ़े लिखे होंगे तो ये बद कमाओगे तो इन्होंने बद टैक्स पे करेंगे।
0: सही बात है,
1: है ना,
0: बिल्कुल अपने देश में सिटीजन पे। ऑन अदर हैंड यूक्रेन को 60 बिलियन डॉलर चला गया है, जब उनको गवर्नमेंट क्रेडिट चेक के बिना ग्रांट और लोन दे सकती है, आपका जब चेक नहीं करी तो हमें लगता
1: है
0: आज कर रही गवर्नमेंट स्पेंड, कल नहीं कर रही। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज ऑफर लगा दिया,
1: पर ये इन्हें ये नहीं चाहिए सरकार ने भी थोड़े जब बंद का तो करती, इन्होंने ग्रांट का तो बंद कर दिया।
0: बंद इन्होंने 14-15 दिन रह गए हैं,
1: तो बंद का तो करने को कहे, क्योंकि बाहु लेटर लोटर भी नहीं चलती रहने दो, बंदे औखे है हजे।
0: बिल्कुल बंदे
2: तो बहुत होंगे, तो बहुत
1: पाए
0: कुछ बिल्कुल। अब लाइक आई डोंट नो, अगर आज अगर 10 बंदों से मिलता हूं मैं अपने ऑफिस में, तो 6-7 बंदे बड़े फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे होते हैं, और फंडिंग का नाम सुन के हमें लगता है भाई क्वेश्चन मार्क कहीं कुछ कैच है,
1: कुंडी हो गई।
0: हम तो कोई कुंडी वाला काम करते ही नहीं, ठान करके गारंटीड स्टैंप लगा के
1: कुंडी हो गई।
2: बिल्कुल
1: $200
0: काम में सेटिंग नंबर हिलते हम करते ही नहीं है,
1: जिम्मे नॉर्मल नहीं पी सुनी है ही नहीं कोई भी कुंडी
0: परसेंटेज नहीं है, कोई हिडन फीस नहीं है, काम होने के बाद लोग ईमानदारी से पैसे दे देते हैं ज्यादातर, दैट्स इट। आप स्किल डेवलप करते हैं आसान से, कोर्स फुली ऑनलाइन कोर्स करते हैं, 2-3 घंटे आप मंडे टू फ्राइडे फोन पे या कंप्यूटर पे लगाते हैं, एज लिमिट कुछ है नहीं, फंडिंग आपके खाते में आती है, हमारे खाते में आती नहीं है जी, और बाकी लाइक एज लिमिट नहीं है, आसान से कोर्स है, असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है। आज काम शुरू नहीं करा, 8 साल हो गए हैं, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है हर एंड डेरी पे, कॉल करें असेसमेंट कराएं, कम से कम अभी 200 पड़े हैं और 70 खत्म हो गए हैं।
1: 437 234 31 75 कितनी बार हो गया?
0: 4 आप फीस बढ़ा लो अपनी, हमारे बारे में सोचते हैं आगे, ब्लेसिंग देते हैं हमें, सर आप फीस बढ़ा लो अपनी, आप कैसे मतलब, तो इट्स वेरी गुड थिंग।
1: मैं पहला बंदा देखा जो लोगों बारे सोचता,
0: हमने ऑनेस्टी भी
2: नाले आम तौर पे पगे नहीं, मैं कनाडा जाके आप अपने बारे सोच लो, बारे पहले बंदे हैं जो लोगों बारे बात सोचते हैं।
0: ना मैंने कोई बड़ा घर ले रखा है, ना मेरे को बड़ी गाड़ी का शौक है, आम इंसान की तरह रहते
1: हैं। इतना सिंपल था मतलब, ना मतलब तो है नहीं,
0: मैंने तो ब्रांडेड गाड़ी नहीं रखी है, सिंपल रहना
1: चाहिए। एक मैंने मिला सी रियल्टर, इदा वो मैंने मिला, मैंने कहा वो बड़ा टॉप दा रियल्टर है ना
2: जी,
1: मैंने गोरा सीगा, मैंने कहा जब मैं घर दबाना हो उदो मैं हाल लेके आऊं ना, गड्डी मेरे को बड़ी भी हैगी, कहना गड्डी मेरे को बहेगा क्यों, कहना ऐ फिर अगला कहता कमीशन जो दे दियो कुछ थोड़ा मोटा, मैं खुश नहीं भरिया तेरे तो बड़ा अज नहीं, मेरे मन पसंद की डील कल नहीं आई, कल ज्यादा तू चाह पिलाने डर गया, पता नहीं हूं रब जाने की गल बात है, गल नहीं बनी,
3: नहीं बनी गल
1: परिवार
3: लई लो कड़ाके कड़वी डील आउन लगी आ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਆ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ 700-800 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
1: ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ,
3: ਆਉਂਦੇ ਦੱਸੋ?
1: ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ 100% ਆਉਂਦਾ ਬੇ।
3: ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸਿਰਫ $99
1: ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ
3: ਜੀ ਸਰ,
1: ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ?
3: ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ,
2: ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ।
3: ਦੋ ਬੈੱਡ ਕੁਈਨ ਤੇ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ
1: ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
3: ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਸਰ।
2: ਅੱਜ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ
1: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ, ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਉਣ ਆਈ ਦੂੰਗੀ,
2: ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
3: ਸਰ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ,
2: ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ
3: ਆ ਗਏ ਜੀ।
1: ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ
0: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ?
0: 437-264-71-75
1: ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
2: ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ
1: 437-264-71-75 ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ
0: ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਫ ਏਅਰ ਇਹ ਬਾਤ।
1: ਨਾ ਨਾ ਆਫ ਏਅਰ ਕਾਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਾਦੇ ਰੱਖਣੇ? 437-264-71-75 ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

0: ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 905-564-6444-905-564-6444 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 4372634-3175 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਨਾਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਥੈਂਕ ਕਾਫੀ ਸਭੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਅਬ ਸਿਰਫ 14 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ 2024 ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੇ ਲੈਸ ਦੈਨ $70,000 ਹੈ, आप पी आर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, ये मैसेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आपका फायदा है, आपका फायदा है। जेब से पैसे निकल नहीं रहे, आ जरूर रहे हैं। बैंक से पैसे कम नहीं हो रहे, आ जरूर रहे हैं। और $500 नहीं आ रहे, ज्यादा आ रहे हैं। 30 से लेके 100,000 की फंडिंग आ रही है, जिसका मेजर पोर्शन आज की डेट में ग्रांट्स है, टैक्स फ्री है, और लाइक आपके खाते में डायरेक्ट आता है, हमारे खाते में नहीं आता। आप एजुकेशन हासिल करें, स्किल हासिल करें, आसान से कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन है, इजी टू पास है, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 30 के हैं, चाहे 75 के हैं, चाहे पेंशन पे आप एलिजिबल हैं। क्रेडिट स्कोर अगर आपका 1, 2, 3 या 0 भी है, आप तब भी एलिजिबल है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट आपका क्रेडिट चेक नहीं करती, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा। और लाइक इसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉयड हाउसवाइफ है, आपको अच्छा फायदा है इसके अंदर। आप अकाउंटिंग सीखें, बिजनेस मैनेजमेंट सीखें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और आप फंडिंग हासिल करें। हमारे पास हार्ड कोर्सेज भी हैं, जैसे HVAC, ECA, PSW, उनमें कॉलेज जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं है
0: जी।
1: और उसमें गवर्नमेंट ही फीस पे कर रही है, आपकी जेब से फीस नहीं जा रही है, गवर्नमेंट फीस पे कर रही है। आपको सेपरेटली आपके अकाउंट में 30 से 100,000 की फंडिंग आती है जी। और इसमें लाइक प्रोग्राम गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, 14 डेज बाद लोन आएगा, ग्रांट नहीं आएगी। आज अगर फैमिली ऑफ 5 है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 उसमें से ग्रांट है जो वापिस नहीं करना, 50,000 जो रेस्ट है वो ऑप्शनल लोन है, जो कि 0% पे एक साल के लिए, और 1.5 साल बाद लाइक उसका इंटरेस्ट रेट 2.5% है साल का। और बाइक की लाइक अगर फैमिली ऑफ 2 है तो अप टू 45,000 की फंडिंग आती है, जिसमें से 25,000 इज द ग्रांट मनी, रेस्ट इज ऑप्शनल लोन एट 0%। आप अभी एनरोल करें, रिटायर्ड कपल है, आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट है इसमें। और हमारे ऑफिस आए 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, कोई मीठी बातें नहीं है, ऑन एयर और ऑफ एयर एक ही फीस है, 199 या 499। काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है, फंडिंग आपके अकाउंट में आती है, हमारे अकाउंट में नहीं आती। लास्ट वीक 29 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है, जिन्होंने मई में ज्वाइन करा था। आज भी 6 बंदों के में फंडिंग गिर गई है, जिन्होंने मई में ज्वाइन करा था। लेट ना करें, कॉल करें, ऑफिस आए, नंबर 437-264-3175, 437-264-3175, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर तुसी भी गलबात करो सारांश नागपाल जी दे नाल। नंबर है यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक दा 437-264-3175, 437-264-3175 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ $55 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1.5 GB ਡਾਟਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, $55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਗਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 80 ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਓਨਟੈਰੀਓ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 58, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 6472011313 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੋਂ। 647-201-1313 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, $55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1.5 GB ਡਾਟਾ, 6472011313 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਾਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।

0: 9 Mississauga।
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: सिटी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: टीम सिद्धुला के आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील्ड रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच ते डिटैच कर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच Traditional two-story freehold townhouses, but de backyard, the unfinished basement and all, sirf 7 lakh dollar di range de vich, in the 700s bahut jald aa rahe ne. Semi-detached kar, 8 lakh di range de vich, in the 800s, releasing very soon. Sab to khas, double car garage wale, but de detached kar, sirf 9 lakh dollar di range de vich, in the 900s, releasing very soon. Public release to pehla, best lot, end lot, corner lot de layi, जल्द तो जल्द संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील्ड रोड ते 2500 तो भी ज्यादा घर तैयार हो रहे ने 2027 एंड 2028 दे विच कॉल टीम सिद्धू 416-302-0016 416-302-0016 टीम
2: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारा लोकी आंदे ने ते हजारा ही जांदे ने पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहंदे ने
3: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहंदे हो तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो
2: कॉल 416-457-3381 416-453-3381
3: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है
2: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है
3: हां इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो आज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381